0: कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राम कृष्ण जय।
1: यू जस्ट हर्ड भगवान बाबा डिस्क्राइब द राम राज्य, द रेन ऑफ राइचियसनेस एंड ट्रूथ एंड इट्स रेलेवेंस इन टूडेज लाइफ। दिस डिस्कोर्स वॉज डिलीवर्ड ऑन द 29th May 1996।
2: You are tuned to Disco Stream of Radio Sai, bringing you the divine message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba, 24 hours a day, 7 days a week. Sai Ram and happy listening.